0: भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सभी चीज़ें भले हमारा वक्त बचाती हैं, लेकिन ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों की तरफ ढकेल रही हैं। ताज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए। श्रोताओं, हमें अपने शरीर को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर के सभी जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं, त्वचा में चमक भी बरकरार रहती है। घर में यदि गर्भवती महिला या छोटे बच्चे हैं तो उनके खान पान का विशेष ध्यान रखिए। एक आदत में बदलाव की हम सभी को ज़रूरत है, और वो ये कि खाना खाते समय टीवी या मोबाइल से दूरी बनाए रखें, आराम से बैठकर धीरे धीरे अपने खाने को चबा चबा कर खाएं। धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाने से खाना अच्छे से पचता है। श्रोता साथियों, सेहतमंद रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी छोटी और अच्छी आदतें अपनाने की बात है। अपनी स्वस्थ आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, खुश रहिए और साथ में दूसरों को भी खुश रखिए। और आइए कार्यक्रम आज सुबह में सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार, यातायात पर आधारित दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर पांडे। दिन प्रतिदिन उपलब्ध सड़कों के अनुपात में बढ़ती वाहनों की संख्या और बढ़ती आबादी के उपरांत भी बिलासपुर शहर से लेकर गांव-गांव में या प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग में भी सभी वाहन भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। यही सुगम यातायात व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमेशा यातायात के नियमों का सम्मान करें। सड़कों में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए प्रयासरत ट्रैफिक के जवानों के संकेतों का पूरी तरह पालन भी कीजिए। यदि आप इस अनुरोध को गंभीरता से स्वीकारते हैं तो हम सबकी यात्रा सुखद होगी, सुरक्षित होगी। मित्रों, आजकल सामान्य व्यक्ति भी आवश्यकता से हटकर विलासिता का वाहन कार लेना पसंद कर रहा है, भले ही पुरानी क्यों ना हो, और इसका दुष्प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। सभी सड़कों में यातायात की अधिकता तो हो ही रही है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसके अलावा सबसे विकट स्थिति रात के समय देखने में आती है। लगभग सभी मोहल्लों की गली सड़कों में ये कारें खड़ी होती है। लोगों के पास अपने ऐसे वाहनों को अपने घर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होती है, और गली सड़कों में खड़े वाहन जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। रात के समय किसी को ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है, या कहीं बाहर से किसी वाहन में आप घर आ रहे हो, या एकाएक विषम स्थिति आ जाए, किसी को अस्पताल ही जाना पड़ा, तब संकीर्ण सड़कों में खड़े वाहन बहुत ही अधिक परेशान करते हैं। कई बार इससे बड़ी क्षति भी हो जाती है, और लोग अपनी कारें गली में खड़ी कर चैन से सो रहे होते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार किसी के लिए अव्यवस्था या संकट उत्पन्न करना मानवता और कानून दोनों के विरुद्ध है। ऐसे वाहन लेने के पहले इसे रखने की अपने घर में जगह बनाइए। गली सड़क सभी के आवागमन के लिए है, न कि कार आदि पार्किंग कर कब्जा करने के लिए। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: अभी आप सुन रहे थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, जिसे आप तक पहुंचा रहे हैं उमाशंकर पांडे। श्रोताओं, आज हम याद करेंगे कार्यक्रम आज सुबह के माध्यम से राजेंद्र सिंह बेदी को, जिनकी आज जन्म जयंती है। राजेंद्र सिंह बेदी आधुनिक उर्दू साहित्य के महान कहानीकार और पटकथा लेखकों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से इंसानी भावनाओं और समाज की असलियत को बहुत ही बारीकी से दर्शाया है। मुंशी प्रेमचंद के बाद उन्हें उर्दू कथा साहित्य का सबसे बड़ा रचनाकार माना जाता है।

उनकी कहानियों में मध्यम वर्ग की पीड़ा, विभाजन का दर्द और स्त्री मन के मनोविज्ञान की गहरी पकड़ दिखाई देती है। साहित्य के साथ साथ बेदी साहब ने हिंदी सिनेमा में भी अपना अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियाँ, संवाद और पटकथाएँ लिखी और निर्देशन भी किया। क्लासिक फिल्म मधुमति और अनुपमा के लिए उन्होंने संवाद लिखे, फिल्म सत्यकाम की पटकथा लिखी और दस्तक फिल्म का निर्देशन किया। अपनी फिल्म दस्तक के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक उपलब्धि के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक चादर मैलीसी के लिए और गालिब पुरस्कार से नवाजा गया। 16 नवंबर 1984 को इस महान कथाकार का मुंबई में निधन हो गया। उनका साहित्य आज भी पाठकों के दिलों में जीवित है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं अनुपमा फिल्म का ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: श्रोताओं, इन संदेशों के साथ ही कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम का पहला नगमा आप तक पहुंच रहा है शान और कैलाश खीर की आवाज़ों में। फिल्म है फना, प्रसून जोशी के शब्द हैं, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

शान, कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का ये गीत। प्रसून जोशी के शब्द थे और संगीत दिया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। फिल्म है सिंग इज किंग। मयूरपुरी के शब्द हैं, प्रीतम चक्रवर्ती ने धुन बनाई है।

राहत फतेह अली खां, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सिंग इज किंग फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना। फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने, जयदीप साहनी की रचना पर सलीम सुलेमान का संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

चलते चलते इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने गीत लिखा था, जतिन ललित ने संगीत रचना की थी। और आइए अब सुनते हैं गुरु फिल्म का ये गीत। एआर रहमान, चिन्मयी श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में। गुलजार के बोल हैं, एआर रहमान ने संगीत दिया है।

0: श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। गुरु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। एआर रहमान, चिन्मयी श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में गुलजार के बोल थे और एआर रहमान ने संगीत दिया था।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। समाचारों के लिए अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल

0: पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बीसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine.

0: what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.

मन के मन अभिवादन स्वरूप लेते, जेमा वो विधाता के नाम तो लेवाते है, संगे संग यही अभिवादन के बहाना मनखे के आत्मी जुड़ाव मया ममता और सादर सम्मान के भाव घलो दिखते। वैसे तो बड़े के छोटे मन पांव पैलगी करते, फिर गांव घर के रोज मिलैया लड़का सियान जवान मन अभिवादन करके एक दूसर ला आदर देते। अभिवादन के शब्द बोले भर भर बड़े छोटे नहीं लगे, सब अपन जुड़ाव और विनम्रता दिखावत अभिवादन करते। छत्तीसगढ़ में मितान बधे के घलो रिवाज है, एक मितान दूसर मितान ल घलो बराबर अभिवादन करत बोलते, जय सीताराम जय जोहार मितान, सीताराम मितान, सीताराम गंगा जल गंगा बारू आदि आदि। संगवारी हो, मनखे मन के आपस में मेल मिलाप के बेरा अभिवादन स्वरूप भगवान मन के नाम लेके ये जुन्ना परंपरा आजो सरलक चलत है। आज आधुनिक काल में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्ते आदि कस कतको नया नया शब्द घलो सुनेल मिलते। पंथ और समाज के अनुसार घलो अभिवादन में जय सतनाम, साहेब बंदगी, जय बूढ़ा देव, जय बड़ा देव, जय लोधेश्वर, जय बहादुरीन करारीन, जय राजिम दाई, जय सकाम्बरी दाई आदि कस और कतकोन अपन अपन इष्ट देवता के नाम लेवत मनखे मन अभिवादन करत दिख जाते। धर्म के अनुसार घलो अभिवादन के परंपरा है, उखर शब्द घलो प्रचलित है, जैसे वालेकुम सलाम, सलाम, खुदा हाफिज आदि आदि। हमार भारत वर्ष में भिन्न भिन्न राज के पहचान उखर अभिवादन ले घलो हो जाते, जैसे तमिलनाडु और केरल के पहचान में वड़क्कम, पंजाब में सत श्रीकाल, राजस्थान में खंभागणी, गुजरात में केम छो आदि आदि चलते। वैसने हमार राज छत्तीसगढ़ के बहु प्रचलित अभिवादन के शब्द आए जोहार, हौ जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के पार परंपरा संस्कृति संस्कार और तीज तिहार में कृषि और ऋषि संस्कृति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति के घलो बराबर योगदान है। जोहार जे आदिवासी संस्कृति के उपज आए, जिला मुख्य रूप ले ऑस्ट्रो एशियाई मुंडारी या फिर संथाली भाषा के निकले एक आदिवासी शब्द माने जाते, जेखर मूल अर्थ में प्रकृति के प्रति भाव समर्पण समाहित है। जोहार हमर छत्तीसगढ़ के संगे संग उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वनांचल क्षेत्र में घलो अभिवादन स्वरूप सुने पर मिलते। जोहार माने जो औहार या जौन हार गए है उनकर बर अभिवादन ऐसा बिल्कुल न हरे, ओखर शाब्दिक अर्थ कोती नहीं जाना चाहिए, बल्कि जोहार के एक अर्थ है जिला सब मन मानते, जय औहर माने जय मतलब जयकार, और हर माने प्रकृति के देवता भगवान शिव, मतलब जोहार माँ भगवान शिव और प्रकृति के जयकार समाहित है। भगवान शिव आदिवासी संस्कृति में अपन विशेष स्थान रखते, बड़ा देव, बूढ़ा देव आदि रूप में भी भगवान शिव ला पूजे जाते। जोहार के मूल में सबके कल्याण करैया भगवान शिव और प्रकृति के जयकार है। जोहार कहले देश राज पेड़ प्रकृति और मनखे संग जीव जानवर आदि सबों के सलामती और बढ़वार के भाव झलकते। कतको मनखे मन जोहार के संग संग जय जोहार घलो कथे, जेला सियान या चिन जानकार है ते मन सही नहीं माने, जैसे राम राम हा जय राम होइस, जय भोले भोले हा जय भोले हो गए, सतनाम हा जय सतनाम हो गए लगते। यही क्रम ला देखत या एकरे देखा देखी या भाव प्रवाह के सेती जोहार हा घलो जय जोहार होगी सोही। जानकार मन जोहार शब्द ला अपन आप में पूर्ण और सार्थक अभिवादन के शब्द माने है, फिर चलन में जय जोहार घलो तो है। जय जुड़े के एक कारण यहू हो सकते, जैसे खेवनहार, पालनहार, संघार आदि शब्द ला देखबो तो यमा हार मतलब हरना है, अर्थात खेवनहार, पालनहार, रुंगहार वो तो विधाता अर्थात भगवान के नाम है। मतलब जोहार माने जो हरण करने वाला है, अर्थात जैन दुख हरैया है ऐसा दुख हरैया के जय हो, यही भावना मा जय जोहार घलो प्रासंगिक लगते। संगवारी हो, जोहार के घलो दू भेद दिखते, एक ठन सेवा जोहार और एक ठन जय जोहार। आज सेवा जोहार वनांचल क्षेत्र मा और जय जोहार मैदानी क्षेत्र मा सरलक सुने पर मिलत है, फिर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्र मा आजो जोहार बोले जाते। फिर संगवारी हो, पहली बेर जोहार कौन बोली सो ही, ये शब्द कबले प्रचलित है, ये डहार जाबो त रामचरित मानस के अयोध्या कांड मा एक चौपाई है, जेमा निषाद राज जी महाराज भगवान राम ले मिले के बेरा उन ल जोहार करत अपन सैन्य साज के बढ़वार के कामना करत दिखते, कि कथे कि चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रुचै रारी। माने निषाद राज जी द्वारा त्रेता युग में ये शब्द के प्रयोग के वर्णन मिलते। निषाद राज जी पेड़ प्रकृति के बीच रहत रहिन, ते पाए के वनांचल में ये शब्द आजो प्रचलित है। जोहार ले ही जोहारना बने हैं, जेखर मतलब है अपन श्रद्धा भाव ला व्यक्त करना। यादव भाई मन के दोहा मा सुने बर मिलते
कि नदियां

0: तीर तीर बैलाल बैलाल ले गयों बैलाक तीर मा बैलाक मुड़ मा माटी रे और ठाकुर घर जो हारेल गयों बुचवा हड़वा बासी रे। तो माने भाव प्रकट करना एखर मूल अर्थ है, मिलना एखर मूल अर्थ है, एखर मूल अर्थ है वादन करना, स्वागत करना। पौनी पसारी के नेंग करत गांव में ठाकुर लोहार बैगा आदि मन घलो मिलेल जाते और अपन भाव भाव प्रकट करत जोहार थे और पौनी पसारी लेते। कुछ भड़के मन या चिढ़े मनखे मन घलो चिढ़त बेरा कि थे कि मैं फलाना ला बने जोहारे हूँ, फिर एखर मतलब सकारात्मक न होके अपन रिस और रोष ल व्यक्त करना है। जोहार शब्द ल लेके छत्तीसगढ़ी में कतकोन मनमोहक गीत सुने पर मिलते। कुछ गीत के मुखड़ा प्रस्तुत है, जैसे गौरा गौरी गीत में जोहार जोहार मोर ठाकुर देवता सेवर लागाओ मैं तोर, वैसने बिहीना के जोहार ले ले मुस्का के जोहार ले ले। अब एक गीत है तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार तें जोहार ले बे संगी आवत जावत तें जोहार ले बे। वैसने तोला सौ सौ बार जोहार घेरी भेरी है जोहार कोरी कोरी है जोहार घेरी भेरी है जोहार। अब एक गीत हो जोहार जोहार देव जोहार जोहार जोहार जोहार बड़ा देव जोहार जोहार। और एक सेवा गीत घलो मिलते जोहार बूढ़ी दाई जोहार बड़ी माई जोहार बमलाई ओखरे संगे संग देवी जोहार जोहार जोहार ले सगा छेरछेरा जोहार आदि जोहार जोहार दाई कतको नकन गीत है वे। और वैसने जय जोहार के घलो गीत है, जय जोहार में जय जोहार ले ले मोर भैया जाय के बेरा जय जोहार ले ले तले दे संगी संग गोठियावत गोठियावत मोरो जाय के बेरा हो गए। तो जोहार सिर्फ अभिवादन के शब्द नो हरे, ये ला बोले भर नहीं जाए बल्कि बोलत बेरा हाथ घलो जोड़े जाते जेमा सम्मान विनम्रता और आदर के भाव झलकते। सार म कहन त जोहार मा जग कल्याण के भाव है, आदर सत्कार है, विनम्रता है, अभिवादन है, स्वागत है आदि के संगे संग सबले बड़े बात एमा एक भावनात्मक जुड़ाव है। और इही जुड़ाव ला लेके आज चाहे गांव होए चाहे शहर होए चारों कोती जोहार और जय जोहार के शब्द प्रचलित है, जिला छोटे बड़े लईका सियान मन एक दूसर ला अपन भावना ला व्यक्त करत अपन मया ला व्यक्त करत सुमधुर वचन मा हाथ जोड़ के बोलते। तो आप सबोला मोर जोहार है, जय जोहार है और मोला विदा दुहु।
1: अभी आप मन श्री जितेंद्र कुमार वर्मा ले वार्ता सुनत रहो, विषय रहिस छत्तीसगढ़ मा अभिवादन के परंपरा। अब कार्यक्रम में आगू बढ़त हन और आप मन ल सुनवात हन एक कहानी जेकर शीर्षक हावे एक औ देवकी। एक कहानी सुनात हैं श्री छगन लाल नागवंशी।
2: महानदी में गंगरेल बांध बने के कारण अपन गांव ल छोड़ के पुनीत परिवार सहित अपन ससुराल में आके बस गए रहीस। शुरू शुरू में पुनीत हर ज्ञानी के मकान ला 5 कौड़ी महीना में किराए में लेके रहा है। उस समय दूसर गांव ले आके रहुइया मनखे मल्ला ग्राम पंचायत डहर ले आबादी जमीन मिलना बड़ मुश्किल रहा है। पुनीत हर पुनाराम और खुरबहरा के लगामी जमीन ला उगता मले के माटी के बड़ जनिक सुघर घर बनवाना रही से। आगू पाछू उत्ती बुड़ती चारों मुड़ा परछी बड़े बड़े खोली पठौआ मा बड़का बड़का धान के कोठी एक ठिन रंधनी खोली बीच मा माई घर बड़ जन गाय गरु बर कोठा और बीच मंझोत मा सुघर अंगना दुआरी घर के पाछू डहर बड़ जनिक बकरी कुआं और 5 हॉर्स पावर के पंप रहा है। तुलसी चावरा के तीर मा पुनीत अपन पुरखा के देवता धामी विराजमान करवाए रहा है। पुनीत के 3 बेटा टीका श्याम और रवि रहा है और 2 बेटी दुकलहीन और किरण नाव रहा है। बड़का बेटा टीका हर खेती किसानी करे, टीका हर नवा नवा तकनीक के संगे संग खेती किसानी करे, गोबर और जैविक खातू के उपयोग अपन खेत में करे, वह रोपा लाई चोपी और खर्री बावत करे, काबर की बाहरा मा माई धान और भर्री भाठा टेपरी मा कोदो कुटकी और हरुणा धान बोवे। जंगल ले निकले नरवा हर सोज पुनीत के खेत के बीचों बीच गुजरे। चार महीना पानी बरसात के दिन मां अब्बड़ पानी पूरा आतीस डुमरही झिल्लही के बूता बन

बना देतीस, पूरा पानी हर मोंघा पारला फोड़ डारतीस, भर्री भाठा टिकरा डोली मन बने बनाए नरवा के तीर तीर के बाहरा डोली मन के हालत खराब हो जातीस। पुनीत हर मेड़ पार मा किसिम किसिम के फलदार रूख राही लगावय, जेकर ले नरवा के माटी के कटाव ला रोके बर बहुते सुविधा होवय। नान्हे बेटा श्याम सिंह पढ़ाई में अब्बड़ होशियार रहय, ओकर सपना रहय कि पढ़ लिख के प्रशासनिक अधिकारी बन के प्रशासन चलावय और जनता के सेवा सटका करव। नान्हे नोनी किरण के चट मंगनी पट बिहा हो गए रहा है, ओहर पठौनी चल दे रहीस। मंझला बेटा रवि हर पढ़ लिख के शहर मा वकीली काम बूता करके लोगन मल्ला न्याय देवाय के काम करय। गांव के मंगलू एक दिन पुनीत घर बैठे ला आईस और ओहर कही थे, भाटो कन्हई के घरवाली बुधिया हर आप मन भर बहुते जलन मरथे। पुनीत कही थे, कान के सुनल और आँखी के देखल मा बहुतेच अंतर होते, मनखेला अपन कर्म और किस्मत मा विश्वास करना चाही। पुनीत और मंगलू गोठियात रहाय, वतकीज बेर गांव के एक झीन सियानदाई फुलवासन हर घलोक आगे। पुनीत कही थे, आ बैठ काकी। फुलवासन कही थे, बैठेच बैठ तोय बाबू। फुलवासन कही थे, सब बने बने बाबू। पुनीत कही थे, सब बने बने हे काकी। फुलवासन कही थे, कन्हई के घरवाली बुधिया हर तोर बड़ अब्बर जलन मरत रिस कातुगा। बुधिया घेरी बेरी कहात रही थे, फलाना के घर हा उधर जातीस। पुनीत के घरवाली गुवालिन कही थे, हमल्ला उधो के लेना न माधो के देना काकी, छोड़ो ना। पुनीत हर चाक ला धर के मियार मा तुरते लिख दीस, जलने वाला जला करे किस्मत हमर साथ है। पुनीत कही थे, कौआ के सरापे ले गाय निमरय। पुनीत के गोसाइन ग्वालिन हर दिन भर अविया जविया बर गुड़ के चाय बनावत थकय घलोक नहीं। उकर घर कोन्हो गांव के सगा सोदर मझनिया आतीस, ततार भात जरूर खातीस और रथिया आय ले जेवन खाके चार पहर रात रुकतीस। सावन भादो के महीना रहाय, बिजली बड़ चमकत रहाय, बादल अब्बड़ गरजत रहाय, घूमड़ घूमड़ के मूसलाधार बारिश होवत रहाय। घर के अमली रूख के बुढ़ती डहर के एक दीवाल भरभरा के गिर गए। पुनीत घबराईस नहीं, फिर ओहर हिम्मत ले काम लीस, धीरज धरीस। घुमका वाला मनोहर हर ओकर घर ला उचाय रहाय, ओला तुरते बलाय बर सोचीस। पुनीत हर तिजूला मनोहर मिस्त्री ला बलाए बर भेजीस। मनोहर अपन घर के परछी मा अंगेठा करा बैठ के जोंधरा ला भूंज के खावत रहाय। मंझोत के तीर दीवार मा बने खिड़की करा के फूला पठेरा मा रेडियो माढ़े रहाय, ओमे गाना बजत रहाय, ओला वो सुनत रहाय। तिजू हर हाँक पारीस, मनोहर के घरवाली रमसीला खेरपा ला खोलीस। रमसीला डर्रा गे, वो हर एक सुर मा कही थे, अई तिजू अतका मूसलाधार पानी बादर मा कहाँ ले आवत हस गा, तय कापत हस, तोला जूड़ लागत होही, झप ले भीतरी डहर आ, मैं हाँ तोर बार तुरते गुड़ अदरक के बढ़िया चाहा बना के लानत हूँ। तिजू अंगेठा करा पीढ़ा मा बैठ गए। रमसीला कही थे, तिजू गांव घर में सब ठीक ठाक तो है ना। तिजू कही थे, सब बने बने हैं दीदी। फिर रमसीला कही थे, फिर का तिजू। तिजू कही थे, मनोहर भाटोला झप ले लाबे कही के पुनीत मामा हर भेजे है। तिजू कही थे, चन्नागा भाटो बहुते चल कर रहा हो गए है, मामा के एक ठिन दीवाल हर भरभरा के उदर गे है। मनोहर ज्यादा फरिया के पूछना उचित नहीं समझीस। दोनों झीन वही पांव बिना देर करे अपन अपन साइकिल मा गांव पहुंच गए। मनोहर एक बज्जू घर के दीवाल ला गिरे देख के दंग रही गे। मनोहर पुनीत ला कही थे, भांटो आप मन झन घबरावो, भगवान में भरोसा रखाओ, मैं तुरते दीवाल ला जोड़े के बूता करता हूँ। पुनीत कही थे, काबर घबराओ मनोहर, ऊपर वाला भगवान सब बने करते। चल चहा पी, तो दीदी हर अंगाकर रोटी और बंगाला के चटनी बनाए हैं, चल खा फिर कमाबे। पुनीत अपन बेटी दुकलहीन ला कही थे, जाना वो दुकलहीन हमर कमैया बनिहार मल्ला तियार के काम मा बलाबे। अतका बात सुन के दुकलहीन हर गांव के तियारे बनिहार मल्ला झप ले बलाईस।
दुकलहीन कही थे, चलो कोन्हो माटी के गारा बतावाओ, कोन्हो साइज बोल्डर लानाओ, सबो मन जुर मिल के ओदरे दीवार ला ऊंचाए के कारज करबो। पुनीत हर एक ही सांस में पुरखा के डोकरी डोकरा और देवता।

मा पहिरे लुगरा और धोती, राम रूप मा पहिरे लुगरा और धोती, सियनिन सियनक गोठ लागे हीरा और मोती, सियनिन सियनक गोठ लागे हीरा और मोती। भाजी को दई माँ जीवन बीते, भाजी को दई माँ जीवन बीते, चले छाती तान की सुरतया थी मोला, जुन्ना सियन हिन सियान की सुरतया थी मोला, जुन्ना सियन हिन सियान की। पढ़े लिखे नहीं रहा है, और पढ़े लिखे नहीं रहा है, रहा है फिर ज्ञान की सुरतया थी मोला, जुन्ना सियन हिन सियान की सुरतया थी मोला, जुन्ना सियन हिन सियान की। मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी, मोर संगवारी जी मोर संगवारी जी मोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी। बड़े बिहनिया ले खेत में जाता, खेत में जाता, गद गद हो के जी बढ़ते कमाता, बढ़ते कमाता। गुण तोर भारी जी, गुण तोर भारी जी, गुण तोर भारी। मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी। एक मुड़ा लाल बैला एक मुड़ा सादा, एक मुड़ा सादा, घर के कमैया में सब लेते ज्यादा, सब लेते ज्यादा। घाम औ पानी के, घाम औ पानी के नहीं करे चिन्हारी। मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी। धन हक जोतत ले भर रिह आगे, भर रिह आगे, जम्मो कचरा के साध भगागे, साध भगागे। आओ जोत डारे जी, आओ जोत डारे जी तोर भाटा भारी। मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी। संगवारियों, मैं धरती माता के आओ एक ठन कविता गावत हूँ, ओला ध्यान देहु। यही धरती के यही भूइया के, यही धरती के यही भूइया के, बन जा अटल किसान सुआ परेवा गावे द दरिया, बन की दोनों मितान सुआ परेवा गावे द दरिया, बन की दोनों मितान। यही धरती के मेहनत करबो अनूप जाबो मन के, अनूप जाबो मन के, खून पसीना हमन बोहाबो अपन करिया तन के, अपन करिया तन के। मेहनत करबो मेहनत पाबो, मेहनत करबो मेहनत पाबो, पाबो नवा बिहान सुआ परेवा गावे द दरिया, बन के दोनों मितान सुआ परेवा गावे द दरिया, बन के दोनों मितान। मोर बर गंगा जमुना लागे, लागे तीरथ धाम, लागे तीरथ धाम, कभू जाड़ कभू घाम जनावे मोर किसन हा नाम, मोर किसन हा नाम। नाम कमाबो नाम जगाबो, नाम

0: कमावो नाम जगावो धरती के गुणगान, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान। धर लाओ हसिया हाथ में डोरी, बांधा ओरी के ओरी, बांधा ओरी के ओरी, धान में जागे हमर किसन हा, भर गे बोरा भोरी, दुखी भगाबो सुखी मनाबो, दुखी भगाबो सुखी मनाबो, मन हो गे अब आन, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान। यही धरती के यही भूया के, यही धरती के यही भूया के, बन जा अटल किसान, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान, सुवा परे वा गावे ददरिया वन के दोनों मितान।
1: अभी आप मन श्री मूलचंद साहूले एक कविता पाठ सुनत रहो और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंकले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं। अब से लेकर 9:55 तक हम जुड़े रहेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत के साथ, आवाजें बेनी दयाल और शेफाली अलवारिस की, और ईव गीत हमने लिया ये जवानी है दीवानी फिल्म से। तो किस तरह से करें अपने इस दिल को काबू में, बताएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

दैन दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत आपने सुना। और हमारा दिल भी बिल्कुल टू स्टेट में रहता है कि स्वास्थ्य की ओर जाए या लालच की ओर, किसे चुने। जब भी बात आती है कि डाइट की जाए या पोषकता को अपने खाने में ध्यान दिया जाए उसका, तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। एक दो दिन की डाइट तो फिर भी चल जाती है, लेकिन आगे जब अपनी सब पसंदीदा चीजों को छोड़ना होता है, आमतौर पर पता नहीं क्यों हमें वही चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा मन तो उसी ओर हमें लेकर जाता है, बार बार उसी ओर लेकर जाता है, और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो जब किसी तरह की मजबूरी हमारे ऊपर आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ जाती है, तो कुछ दिन तो हम ये फॉलो करते हैं, कुछ दिन तक हम ये मानते हैं कि भाई ये नहीं करना खाना है या वो नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगती है और स्वास्थ्य के अच्छे होने की खबर हम तक पहुंचती है रिपोर्ट्स के जरिए, या हमारी अच्छी सेहत हमारे चेहरे पर नजर आने लगती है, तो हमारा मन एक बार फिर हमें उन्हीं गलियों में ले जाना चाहता है जिन गलियों से हम किसी तरह से निकलकर अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर खुद को रोकना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा खुद के साथ सख्त होना भी पड़ता है कभी कभी, कभी कभी मन को समझाना पड़ता है। लेकिन ये चीज आप सोचिए कि खुद से आपको प्यार करना है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो तो हर दिन त्योहार ही होता है।

0: आई लव न्यू ईयर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बातें कर रहे हैं पौष्टिकता की या कहें राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह के मौके पर हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में पौष्टिकता हम कैसे ले आ सकते हैं खान पान में और किस तरह से जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उन्हें अपने खान पान से दूर कर सकते हैं। तो जब भी हम डाइट करने का एक फैसला करते हैं तो एक मौके पर जाकर हमारा मन हमें वापस उस ओर ले जाना चाहता है जहां से हम किसी तरह निकल के आए

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत लुटेरा फिल्म के इस गीत में। और जब भी हम कदम बढ़ाते हैं स्वास्थ्य की ओर तो कुछ इसी तरह से मन गुनगुनाता है और जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है। शरीर भी हमें हल्का लगता है, चेहरे पर अलग से चमक आ जाती है, लेकिन इस ओर बढ़ने के लिए ऐसा लगता है जैसे लुटेरा फिल्म का गीत था, लगता है कि हमारी सारी खुशियां ही लुट गई हैं, कुछ भी हमें खाने पीने नहीं मिलता। पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये अगर हम सोचें तो, एक बड़ा बड़ा जो हम कदम उठाते हैं ना, बड़े बड़े फैसले लेते हैं कि आज के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाएंगे, मिठाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह के जब बड़े बड़े हम फैसले लेते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें ज्यादा लगने लगते हैं, दबाव लगने लगता है कि क्या करें। इसलिए जब हम जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। स्वास्थ्य की ओर भी इसी तरह से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप इन कदमों के जरिए ही एक बड़ी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो छोटे कदम क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा कदम तो ये हो सकता है कि आप भोजन में नमक और शक्कर की मात्रा धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तो इससे आपका जीवन तो बदलाव आएगा ही आपके जीवन में, और साथ ही साथ आपको अपने आप ही ये बदलाव महसूस होंगे। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, आज के लिए इतना ही प्रण काफी है।

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे समीर के बोल, इल्याराजा का संगीत चीनी कम फिल्म के इस गीत में। और आप भी सोचिए कि आज से अपनी चाय कॉफी में लेंगे चीनी कम और रखेंगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, साथ ही बनेंगे अपने ही स्वास्थ्य के नजरबट्टू।

तो आज से रखेंगे अपना ख्याल और अपने स्वास्थ्य का ख्याल, इसी वादे के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

अर्जुन का जन्म 1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मेलोडी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

फिल्म पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 9:55 होने को है। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। समाचार के बाद 10:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पीएम आवास ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ने ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये नियुक्ति हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अनुशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% की उत्साहजनक जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भी इस राष्ट्रीय विकास की गति के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराने के लिए ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में हितग्राहियों को रेत की उपलब्धता आसान बनाना और उनके पक्के घर के सपने को साकार करने में सहयोग देना है। ई रेत संगवारी पोर्टल के माध्यम से पीएम आवास योजना ग्रामीण के पात्र ग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मुख्य लिखित परीक्षा

का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल 608 कैंडिडेट्स का चयन अब प्रक्रिया के अगले चरण साक्षात्कार के लिए किया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य शासन के विभिन्न विभागों में 265 पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तर भाग के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बलरामपुर और सूरजपुर और इससे लगे हुए जिलों में अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आज रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल बुधवार को भारत मंडपम में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि देश में जल सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय के जरिए जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी मंथन होगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर रायपुर के गुरु घासीदास ऑडिटोरियम में आज मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें बुद्धिजीवियों से यूसीसी के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पीएम आवास ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ने ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। डीजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: बाटी, रही ना माया बांधी। संत कबीर दास के ये शब्द सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश ही है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु ही बताते हैं सत्य, प्रेम और शांति का मार्ग। भारत में गुरुकुल की परंपरा का उद्देश्य भी यही था, जहां रहकर शिक्षा दान और ज्ञान प्राप्त किया जाता था। गुरुकुल में बड़े बड़े पुस्तकालय स्थापित किए जाते थे। पुस्तकों को ज्ञान प्राप्ति का आधार माना जाता था। यही कारण है हर एक सभ्यता ने पुस्तकों का सम्मान किया है और इन्हें गुरु के तुल्य माना है। किताबों ने ज्ञान को विस्तार दिया है, सीमाओं को समाप्त किया है। ज्ञान पिपासुओं के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसा ही एक सर्वसुलभ पुस्तकालय है, नालंदा परिसर। रायपुर का नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी और ऑक्सी रीडिंग जोन के रूप में विख्यात है। यहाँ आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ यूपीएससी, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अनुकूल माहौल और किताबें उपलब्ध हैं। नालंदा परिसर की बेहतरीन खूबियों के कारण ही ये पुस्तकालय सहज ही पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
1: मैं डॉक्टर मंजुला जैन, हेड और लाइब्रेरियन नालंदा परिसर लाइब्रेरी से हूँ। और जिस तरह के आप जानते हैं कि ये अपने आप में देश की पहली प्रारंभ हुई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो 2400 घंटे और 7 दिन खुली रहती है। और इसका फायदा ये मिला है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो दिन और रात बिल्कुल पढ़ाई करते हैं। और अब तक विगत 9 साल हो रहे हैं इसको, इसकी स्थापना के, और इन 9 सालों में 13,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर अध्ययन किया है और बहुत बड़े ऊंचे जो सफलता के पायदानों को उन्होंने प्राप्त किया है। और अभी जो वर्तमान में यदि कोई सदस्य चाहता है कि इसको नालंदा परिसर की सदस्यता लेनी हो तो इसके लिए यहाँ पर यदि सीट उपलब्ध है तो उसके अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और वे चाहें तो अपना नाम यहाँ पर आकर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना पंजीयन के पूर्व दर्ज करा सकते हैं और सीट उपलब्ध होने पर उनको ऑफिस से कॉल जाता है। और सदस्यता लेने के लिए व्यक्ति को मात्र नॉमिनल चार्ज 500 रुपए का मासिक शुल्क रहता है और 2500 रुपए क्वेश्चन मनी लगती है जो कि एक बार ही देनी होती है। और जब वो सदस्यता वापस लेते हैं तो वो क्वेश्चन मनी उनको वापस हो जाती है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो सभी को आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती है। यहाँ हमारे पास एक फॉर्म मिलता है वो भरना पड़ता है और बैंक डिटेल्स की जिसमें बैंक की जो पासबुक होती है उसके फ्रंट पेज की कॉपी जमा करनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ की सदस्यता मिल जाती है। एक RFID कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस RFID कार्ड के माध्यम से आपकी एंट्री एक्सेस होती है और जो इशू रिटर्न की जो प्रोसेस होती है, जो हमारी क्यूएस मशीन लगी हुई है, वो उसके जरिए आप यहाँ पर 2 बुक्स जो है 14 दिन के लिए इशू करा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अपग्रेडेड हाई लेवल की जो क्यूएस मशीन लगी गई है और हमारा एक RFID गेट भी है जिससे यदि बिना उसके इशू रिटर्न कराए यदि कोई व्यक्ति उससे परेशान होता है किताबों को लेकर तो वह साउंड करने लगता है, मतलब ट्रैकिंग डिवाइस की जैसे वो कार्य करता है। और हमारे पास लगभग 50,000 किताबें हैं और उन सभी किताबों पर RFID चिप लगी हुई है जो रीड करती है और जो हमारा जो सिस्टम है उसको अपडेटेड रखती है। हमारे पास जो 50,000 किताबें हैं उसमें ज्यादातर किताबें सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के हों, CGPSC के हों, नीट के हों, लॉ के हों, MBBS के हों, नेटसेट UGCG के हों, जितने भी तमाम तरह के एग्जाम्स हैं उसकी जो किताबें हैं हमारे पास हैं। और उसके जो सिलेबस में जो जो भी कोर्स के लिए जरूरत पड़ती है, पाठ्यक्रम जो होता है उसके अनुसार ही किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। हमारे पास NCERT की और SCERT की क्लास

कलपति की किताबें हैं, और हिंदी और इंग्लिश जो लिटरेचर है, महान जो साहित्यकार रहे हैं उनका भी एक बृहत संग्रह हमारे पास है। इसके साथ ही विद्यादान का एक हमारा एक बहुत ही विशिष्ट एक सेक्शन है, जिसमें समाज के ऐसे गण्यमान व्यक्ति या कोचिंग संस्थाएं या ऐसे लोग जिनके पास कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो चाहते हैं कि अब उन्होंने अध्ययन कर लिया है और अब वो बाकी युवाओं को दान देना चाहते हैं, तो विद्यादान के सेक्शन में वो अपना यहाँ पर किताबों को दान दे सकते हैं। और नालंदा पर्सनल लाइब्रेरी 24 घंटे चलती है, और इसके लिए हमारा जो पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है, सभी फ्लोर पे आरओ फिल्टर हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, और वॉइस का जो माइक सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म सिस्टम है, डिस्क की सुविधा है, तो ये सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। साथ ही हमारा जो स्टाफ है वो पूरे 24 घंटे यहाँ पर कार्यरत रहता है, और 15 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये पूरा एक ऐसा ऑक्सी रीडिंग जोन, एक ऐसा इको फ्रेंडली जोन है जहाँ आप अंदर के साथ साथ बाहर के प्रमाइसेस में भी, बाहर के एरिया में भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। 3 फ्लोर में ये इस तरह का बना हुआ है जहाँ एक नेचुरल लाइट जो है, इन इस हाईटेक जो ग्लासेस हैं जो टेम्परेचर को रोकते हैं, और उससे ये जो आपको लाइट है, एक नेचुरल लाइट के भीतर भी आप अंदर पढ़ सकते हैं। तो 24 घंटा चलने वाला एक ये एक अनूठा संस्थान है, और यहाँ पर जितना एक सुरक्षित और अनुशासित हम माहौल देते हैं, उसी की वजह है कि यहाँ पर जो इसका सक्सेस रेशियो है ये बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो यहाँ के संस्थान से आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, कलेक्टर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ पर 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, जो यहाँ पर जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है वो यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं, संख्या इससे कहीं ज्यादा है। और यदि ये हम बात करें कि यहाँ के जितने भी छात्र हैं उनके लिए हम समय समय पर एक सफलता की पाठशाला, एक हम प्रोग्राम भी चलाते हैं, जो जिसमें बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट हमारे जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, ताकि किस तरह से वो अपने अध्ययन करें, किस तरह के इंटरव्यू की तैयारी करें, किस तरह का उनको अपना सिलेबस स्टडी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, वो तैयारी वो कर सकते हैं। और समय समय पर जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर चयनित होते हैं हम उन सभी को सम्मानित भी करते हैं, और उनके जो दूर दराज से, छत्तीसगढ़ के बहुत दूर दराज से भी लोग आके यहाँ पर आसपास के घरों में रहते रेंट पे रहते हैं और यहाँ पर दिन भर अध्ययन करते हैं, तो ऐसे सभी सदस्यों के लिए हम एक हेल्थ कैंप भी समय समय पर लगाते रहते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य परीक्षण भी हो सके। और यहाँ की जो परीक्षाओं का और यहाँ के जो सदस्यों का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा रहा है, इसी को देखते हुए आज जिले में बहुत सारी जगह, जैसे रायगढ़ में, सुकमा में, जगदलपुर में, महासमुंद में, बहुत सारी जगह लाइब्रेरी बन चुकी है और बहुत सारे जगह निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी वो बन जाएंगे, और रायपुर में भी बहुत जल्दी हमें 2 और नई लाइब्रेरी की सौगात भी मिलने वाली है। तो शासन प्रशासन का जो युवाओं के लिए जो एक उनको दिशा देने के लिए, उनके उनके ग्रोथ के लिए, उनके करियर निर्माण के लिए जो बहुत कम शुल्क से जो एक प्रयास शुरू हुआ, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और युवा ही देश की असली संपत्ति है, और उनको यदि सही दिशा में लगाया जाए तो न सिर्फ वे अपने परिवार का, अपने समाज का, राज्य का और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और शासन ने जो बहुत अच्छा यह प्रयास शुरू किया है, इसका आज परिणाम भी बहुत अच्छा

0: रायपुर के नालंदा परिसर की उपलब्धियां प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। रायपुर में अभी 3 सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन संचालित हैं। इनमें 1000 सीटर नालंदा परिसर, 800 सीटर तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी और 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी जोन शामिल हैं। पिछले 5 सालों में यहां अध्ययन करने वाले 400 युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर उच्च पदों को सुशोभित किया है। साथ ही अनेक युवाओं को प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश भी मिला है।
1: मैं अमन सोनी रायपुर का निवासी

से हूँ। अभी मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने अपने जॉब की तैयारी नालंदा परिसर से की है और सीजी व्यापम के पीएचईडी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 14th रैंक अचीव किया है। इस पूरी तैयारी में नालंदा परिसर ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। नालंदा परिसर हम स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। यहाँ शांत माहौल है, अच्छी सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्था है जो कि बहुत ही सराहनीय है। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जगह बहुत ही उपयोगी है। यहाँ अगर पढ़ने से एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और दूसरे लोगों को देख के एक कॉम्पिटेटिवनेस की भावना जागती है और जिससे फोकस करने में मदद मिलती है। यहाँ पर पुस्तकालय की भी सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पर हर एग्ज़ाम के सभी पुस्तक जो कि ऑथेंटिक होते हैं वो सभी उपलब्ध हैं। यहाँ पर गार्डन एरिया में बहुत सारे जगह पर डिस्कशन है, जिससे कि जो हमको हेल्प करते हैं कि हम वहाँ अपने डिस्कशन कर सकें, जिससे कि हमको कोई भी एग्ज़ाम में जीडी होता है उसमें हेल्प मिलता है। मेरे लिए नालंदा परिसर सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का एक प्रेरणादायक जगह है। नालंदा परिसर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएँ।

0: छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम कर रही है। यहाँ हर क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी का अवसर मिले, इसलिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नालंदा परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। सुकमा से लेकर सूरजपुर और रायगढ़ से लेकर कवर्धा तक हर कोने में अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन खोले जा रहे हैं। ये नालंदा परिसर सिर्फ इमारतें नहीं, युवाओं के उज्जवल भविष्य की बुनियादें हैं।
1: मेरा नाम बागेश्वरी ठाकुर है और मैं रायपुर शहर से हूँ। मैं नालंदा में वर्तमान में मैं एडीओ के पद पर सिलेक्टेड हूँ और साथ ही साथ मेरा महिला एवं बाल विकास में बाल अधीक्षक के पद में भी सिलेक्शन हुआ है। और नालंदा का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो नालंदा की मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट रही हूँ और वहीं से ही देखा जाए तो मेरा ये सिलेक्शन का बहुत बड़ा योगदान नालंदा को जाता है। वहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वहाँ का एनवायरमेंट इतना अच्छा लगता था कि पढ़ाई के लिए सुटेबल तो था ही, साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे ग्रुप स्टडी भी करते थे तो ग्रुप स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। मेरी अधिकतर पढ़ाई तो ग्रुप स्टडी में ही होती थी। नालंदा में बेसिक सुविधाएं तो बहुत अच्छी ही हैं। 24/7 लाइब्रेरी ओपन होता है, वाईफाई की सुविधा हमको प्राप्त होती है, बुक्स हमको अवेलेबल है। जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की हम तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, आपको बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ स्टाफ का भी आपको सपोर्ट मिलता है। बेसिकली मैं CGPSC की तैयारी करती हूँ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी की बुक हो गई, ज्योग्राफी की बुक हो गई, हमारे छत्तीसगढ़ की बुक हो गई। और उसके अगर और ग्रुप स्टडी की बात करें तो ग्रुप स्टडी के लिए वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हम बाहर में बैठ के भी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ऊपर छत में भी स्टडी कर सकते हैं। और जो ग्रीन बोला जाता है ना, ग्रीन इन्वायरमेंट या जो मेंटल पीस के लिए एक आपको पीस, पढ़ाई के लिए आपको मेंटल पीस की जरूरत होती है, तो नालंदा का एनवायरमेंट आपको एक मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है। जब भी आप पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गए तो आप बाहर वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से आपको और ज्यादा

एनर्जी मिलती है, आप बहुत, आपको इनर पीस मिलता है, इससे आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। इसी तरह और अभी गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट की योजना भी है कि हर जिले में ये नालंदा लाइब्रेरी ओपन हो रहा है, तो हमारे रायपुर शहर के साथ साथ इस राज्य के सभी शहरों को के स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिलेगा, जिसके लिए मैं सरकार की आभारी हूँ।

0: नालंदा परिसर केवल एक पुस्तकालय नहीं, ये आशा और सकारात्मकता का केंद्र है। यहाँ के हर एक कोने में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की खामोश लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति गूंजती है। नालंदा परिसर की सफलता केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले हजारों युवा आज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। सफल होने वाले युवा बड़े गर्व के साथ इसका श्रेय नालंदा परिसर को देते हैं।
1: मेरा नाम आशुतोष रंजन देव है, मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं सन 2022 में नालंदा परिसर में अध्ययन करने के लिए आया था और तब से मैं अभी तक यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। रिसेंटली अभी जो मंडी उप निरीक्षक का रिजल्ट आया है उसमें मेरा 18वां रैंक आया है। नालंदा से पढ़ने में मुझे बहुत सहायता मिली। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, सारे एस्पिरेंट्स एक साथ बैठकर यहाँ पे पढ़ते हैं, तो देखकर एक तो मन में कॉम्पिटिशन की भावना आती है कि हाँ मुझे इनसे आगे निकलना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, सभी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ जो किताबें मिलती है लाइब्रेरी में, मोस्टली जो किताबें हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाती है तैयारी के लिए। कुछ किताबें पहले मिसिंग थी वो भी इन्होंने अपने मतलब लाइब्रेरी में ले आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कभी मतलब गर्मी के लिए एसी बहुत अच्छे से है, पीने के पानी का व्यवस्था है, वॉशरूम क्लीन रहते हैं। अभी रिसेंटली कल ही यहाँ पे नए चेयर्स आए हुए हैं फिलहाल हमारी सुविधा के लिए। तो नालंदा काफी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए सोचा और मैं नालंदा परिसर को अपने सबके लिए एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ फिर ही मतलब अच्छे से पढ़ पाया और यहाँ रहकर मैंने सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। जैसे अगर साथ में पढ़ने की बात हो तो जो गार्डन एरिया है नालंदा में वहां पर हम बैठ के डिस्कस किया करते थे। दिन भर हम अपना पढ़ते थे, शाम को हमें टारगेट बनाया करते थे कि क्या हमको डिस्कस करना है, तो हम उसको डिस्कस करते थे, उसका फायदा होता था। उसके अलावा जैसे अदर और भी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, उनके भी गाइडेंस का हमको फायदा मिला कि अगर उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया कि कैसे मतलब स्टडी करना चाहिए, कैसे हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, कम कम पढ़ के कैसे ज्यादा आउटपुट निकालना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमको यहाँ से मिली।

0: अवसर मिलेंगे। ये पहल छत्तीसगढ़ के शिक्षा ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।
1: मेरा नाम ओजस्वी कुमार है। मैं CGPSC 2024 में सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैंने अपनी तैयारी के दौरान नालंदा परिसर, नालंदा लाइब्रेरी, वहाँ पे रहकर वहाँ पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और वहाँ से मैंने अपनी तैयारी के दौरान नालंदा परिसर में जाकर तैयारी चालू की थी। नालंदा लाइब्रेरी रायपुर में स्थित एक सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक विद्यार्थी को जो पढ़ने के लिए माहौल चाहिए वो हर वो चीज अवेलेबल है, भी अफोर्डेबल कॉस्ट में, या फिर एक सही जगह में, सही रास्ते में, जहाँ जाने में भी कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी मोटर सबकी सुविधा है और वहाँ फीस भी काफी कम है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ 24 घंटे अवेलेबल है। वहाँ हम लोग शाम को भी जाके, नाइट तक भी, रात को भी पढ़ लेते थे। साथ ही में मैंने अपनी तैयारी के दौरान काफी सारी जो पुस्तकें लगी थी, जैसे कि GS की, मैथ रीजनिंग की, तो सारे अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वहाँ की लाइब्रेरी से उन पुस्तकों को मैंने यूज किया। साथ ही में कभी कभी जब पढ़ाई के दौरान हेक्टिक लगता था, मन नहीं करता था पढ़ने का, तो फिर और किसी भी प्रकार की किताबें, नॉवेल वगैरह, कहानी पुस्तक वगैरह भी अवेलेबल थी, उन पुस्तकों को भी पढ़ के अपना मन बहलाया करता था। और वहाँ काफी अच्छे फ्रेंड सर्कल्स मिले, जिन लोग काफी अच्छे अच्छे पोस्ट में सेलेक्ट हुए, उनसे भी कंटिन्यू गाइडेंस वगैरह मिलता था। साथ में वहाँ पानी, बिजली सभी की 24 घंटा व्यवस्था अच्छे से रहती थी, तो इसलिए पढ़ाई में जो होने वाली फिजिकल प्रॉब्लम्स है उन चीजों को फेस नहीं करना पड़ा। तो इसलिए मैं नालंदा परिसर और जिला प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ। नालंदा परिसर में सभी प्रकार की किताबें भी अवेलेबल है। वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा और नालंदा परिसर प्रबंधन द्वारा लगभग CGPSC, UPSC और अन्य कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, नीट हैं, जेई, अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की बुक भी काफी वाइड मात्रा में अवेलेबल है। तो अगर किसी भी प्रकार का तैयारी करना है, नीट, PPA की, या फिर कॉलेजेस की भी, इंजीनियरिंग की भी, तो उन सब की भी किताबें अवेलेबल हैं। तो हम कॉलेजेस की तैयारी के दौरान भी वहाँ की किताबें यूज करते थे, और साथ में CGPSC, UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तो किताबों की कमी ही नहीं है, तो वहाँ से हमको और अन्य बाहर से अपना बुक्स वुक्स खरीदने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा था। वहाँ से सारी नीड्स पूरी हो गई थी किताबों की।

छत्तीसगढ़ शासन युवाओं को पढ़ाई की हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में नालंदा परिसर का और भी विस्तार करके पूरे राज्य में सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री और शांत माहौल युवाओं को प्रदान किया जाए, जिससे वे पूरे फोकस और लगन से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। नए नालंदा परिसरों के निर्माण से न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को भी बड़े शहरों की बराबर

आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नालंदा परिसर प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि प्रशासन और आम नागरिक एक साथ मिलकर कोई सपना देखे तो वो निश्चित रूप से साकार होता है। नालंदा परिसर सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, रायपुर की युवाओं की सफलता की प्रतीक है। इससे हर उस ज्ञान पिपासु की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। पढ़ने की रुचि को आदर्श जीवन के साथ जोड़कर महान साहित्यकार और दार्शनिक मार्क ट्वेन ने कहा है, अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक शांत अंतरात्मा, यही आदर्श जीवन है। ज्ञान के लिए आतुर अपनी प्राचीन विरासत को लेकर रायपुर का नालंदा परिसर लगातार बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 होने को हैं। पेश है कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम का पहला तराना आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है डंकी। स्वानंद किरकिरे और साथी की आवाज़ें हैं प्रीतम का संगीत।

कार्यक्रम का पहला तराना आप तक पहुंचा अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम था डंकी। स्वानंद किरकिरे और साथी की आवाज़ें प्रीतम ने संगीत दिया था। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, अमाल मलिक का संगीत।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। काइट्स इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं, जिसे गाया है के ने। गीतकार नसीर फराज हैं और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: तराने को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार, यातायात पर आधारित दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर पांडे। दिन प्रतिदिन उपलब्ध सड़कों के अनुपात में बढ़ती वाहनों की संख्या और बढ़ती आबादी के उपरांत भी बिलासपुर शहर से लेकर गांव-गांव में या प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग में भी सभी वाहन भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। यही सुगम यातायात व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमेशा यातायात के नियमों का सम्मान करें। सड़कों में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए प्रयासरत ट्रैफिक के जवानों के संकेतों का पूरी तरह पालन भी कीजिए। यदि आप इस अनुरोध को गंभीरता से स्वीकारते हैं तो हम सबकी यात्रा सुखद होगी, सुरक्षित होगी। मित्रों, आजकल सामान्य व्यक्ति भी आवश्यकता से हटकर विलासिता का वाहन कार लेना पसंद कर रहा है, भले ही पुरानी क्यों ना हो, और इसका दुष्प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। सभी सड़कों में यातायात की अधिकता तो हो ही रही है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसके अलावा सबसे विकट स्थिति रात के समय देखने में आती है। लगभग सभी मोहल्लों की गली सड़कों में ये कारें खड़ी होती है। लोगों के पास अपने ऐसे वाहनों को अपने घर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होती है और गली सड़कों में खड़े वाहन जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। रात के समय किसी को ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है या कहीं बाहर से किसी वाहन में आप घर आ रहे हो या एकाएक विषम स्थिति आ जाए, किसी को अस्पताल ही जाना पड़ा, तब संकीर्ण सड़कों में खड़े वाहन बहुत ही अधिक परेशान करते हैं। कई बार इससे बड़ी क्षति भी हो जाती है और लोग अपनी कारें गली में खड़ी कर चैन से सो रहे होते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार किसी के लिए अव्यवस्था या संकट उत्पन्न करना मानवता और कानून दोनों के विरुद्ध है। ऐसे वाहन लेने के पहले इसे रखने की अपने घर में जगह बनाइए। गली सड़क सभी के आवागमन के लिए है, न कि कार आदि पार्किंग कर कब्जा करने के लिए। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: अभी आप सुन रहे थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना आइए सुनते हैं धुरंधर फिल्म से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह अरमान खान, इरशाद कामिल के शब्द हैं, तर्ज बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

गदर टू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सईद कादरी ने गीत की रचना की थी, मिथुन ने संगीत दिया था। और अब कार्यक्रम का अंतिम तराना, फिल्म का नाम है सैम बहादुर। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ें हैं, गुलजार के शब्द हैं और तर्ज बनाई हैं शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ने तराने यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज NCERT के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
0: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामथारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी। श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकनाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
0: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकनाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
0: उन्होंने

0: भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
1: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
0: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
1: जी।
0: वह प्रजा मंडल का सदस्य था। उसे प्रजा मंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
1: जी।
0: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
1: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
0: हे लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
1: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
0: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया, तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीने उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए, आप पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे? आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the grass I eat.

0: what do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, और सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों एक गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है, और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक

0: गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen! How are you?
4: Happy birthday, Stephen! Thank you,
5: congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yay.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.
2: Yay.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh!

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक

0: से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी

0: Abi. Abim. Cina. Çatal. Toz. Toz haldeyim. Bir sar beni. Buraya. Paçaz. Sar. Ağaçıyım.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।

0: प्रोफेसर डेनिस
1: जी,
0: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है? आपने इसका विकास कैसे किया?
1: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
0: ओह।
1: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
0: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
1: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
0: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए, सुनिए।
2: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह

0: मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक आप जुड़े रहिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

बेगम अख्तर को अभी आपने सुना, ये खजरी थी बेगम अख्तर की आवाज में। और आगे इस कार्यक्रम में श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं एक नगमा, आवाज सुरेश वाडकर की।

0: शहरयार की लिखी गमन फिल्म की ये गजल आपने सुनी सुरेश वाडकर की आवाज में, जयदेव का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।